휴. 당당당당 퐁! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅! 팅!